इस मौसम में होशियार रहें, फ्लू, कोविड 19 और दीगर सांस की बीमारियां अब भी मौजूद हैं। अपनी जाति और माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू से मुंह और नाक ढांपें। माय साबुन और पानी से कम अज़ कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। तबीयत खराब हो तो फौरन मास्क पहनें और डॉक्टर से मशवरा लें। हर साल वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी उतना बेहतर। हाई रिस्क ग्रुप, रेजिडेंशियल केयर होम्स के रिहायशी, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के वो अफराद जिन्हें दायमी बीमारियां हैं, 6 माह या उससे ज्यादा उम्र के वो लोग जिनका मुदाफती निज़ाम कमजोर है और हमला खवातीन को वक्त पर कोविड 19 बूस्टर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखिए, जिसका पता है www.chp.gov.hk।

0: ये आवाज थी बेदी हसन की।
1: मेंडा इश्क दी तू, मेंडा यार दी तू।
2: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रफाकत अली खान और आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ। खुश रहिए, एंजॉय किए लाइफ को, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है।
0: सामईन, गुज़िश्ता इतवार हमने कलामे शायर बज़ुबाने शायर में आपको एक गजल सुनवाई थी।
3: वफा के खूंगर वफा करेंगे, ये तय हुआ था, वतन खातिर किए
4: मरेंगे, ये तय
3: हुआ।
0: इस खूबसूरत गजल के शायर के बारे में दोस्तों ने जानना चाहा। ये गजल थी जनाब हनीफ असदी की। आपका नाम हनीफ अहमद और तखल्लुस हनीफ था। आपने 1919 में शाहजहाँपुर में असद शाहजहाँपुरी के घराने में आँख खोली। घर के इल्मी और अदबी माहौल ने इन्हें भी शायरी की जानिब मायल कर दिया। वो नवी जमात में थे जब उन्होंने पहली गजल कही। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जमाने तालिबे इल्मी में मुशायरों में शिरकत करने लगे। अगस्त 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन की हैसियत से मुलाजिम रहे। उन्होंने रेडियो टेलीविजन के अलावा मुल्क भर के मुशायरों में बाकायदा शिरकत की। गजल उनका खास मैदान था। 1971 में हज के बाद नादगुई की जानिब रागिब हो गए। उनका शेर है, मेरे मिजाज पे भारी है अब गजल का मिजाज, जबां खुले तो खुले मिदहते नबी के लिए। उनके शायशुदा मजमूए कलाम जिक्र खैरुल अनाम और आप के अलावा गजल का एक और सलासी के दो मजमूए मौजूद हैं जो अभी शाये नहीं हुए। वो एक सनद याफ्ता होम्योपैथिक डॉक्टर थे और घर पर ही क्लिनिक करते थे। उनका इंतकाल 19 दिसंबर 2005 को कराची में हुआ। इन मालूमात की फरहमी के लिए हम उनके साहिबजादे आरिफ असदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।

पाकिस्तान के नामवर गुलूकार मसूद राणा की बरसी 4 अक्टूबर को मनाई गई। मसूद राणा 6 अगस्त 1941 को पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक मीरपुर खास से था और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गायकी का आगाज किया था। उनकी शोहरत का आगाज फिल्म शरारत के नगमे ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है से हुआ। इस फिल्म के मौसीकार दीबू भट्टाचार्य थे, जबकि फिल्म साज इकबाल शहजाद और हिदायतकार रफीक रिजवी थे। ये फिल्म जुलाई 1963 में रिलीज हुई थी।

हरीफों से पंजा आजमाई के दौरान में अपने उसलूब और ढंग को बदलते रहिए कि एक ही तर्ज पर काम करने से हरीफ आपके अमल को आपसे पहले ही पढ़ लेंगे और आपकी चाल का तोड़ कर चुके होंगे। एक ही सीध में उड़ने वाला परिंदा बआसानी शिकार हो जाता है, मगर जो परिंदा अपनी सम्त तवातुर से बदलता रहे आसानी से शिकारी के हाथ नहीं लगता। जहन में जो मंसूबा हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और देखिए कि इस मौके पर क्या अमल मुनासिब हो सकता है। एन मुमकिन है किसी मरहले पर कुछ न करना ही उस लम्हे का बेहतरीन अमल हो।